0: taking my car.
1: Pay back the loan, take back your car.
2: पूरा एक साल हो गया है, कमाई एक डॉलर की नहीं हुई, बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट जीरो, क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल कर दिए गए हैं, वी आर लकी फोन्स काम कर रहे हैं, पानी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, वैसे जल्दी इन सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: क्यों?
2: हाउस लोन, इंस्टॉलमेंट्स, 6 महीने की।
0: सो बिग डील, थोड़ा सामान बेच के हम
2: नहीं बेच सकते, हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो लोन पे या तो क्रेडिट कार्ड्स पे लिया है। ये फर्नीचर, कारपेट, पर्दे, हमारे कपड़े, तुम्हारा ये सूट, यहाँ तक कि तुम्हारे ये जूते भी।
0: ओके ओके, तो सब कुछ लोन लेके खरीदा है, अब वापस करने में थोड़ी देर तो हो ही जाती है ना, सो घर से तो नहीं निकाल देंगे। They can't do that.

0: इज अ बैड थिंग
1: डैडी मुझे पुअर नहीं होना
2: इट्स नॉट अ बैड थिंग थोड़ा मुश्किल है बट पुअर होने में कोई बुराई नहीं
0: बट हम पुअर होंगे तो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा मिसेस पेगी को छोड़ना पड़ेगा
3: नहीं छोड़ना पड़ेगा नेवर हमें सिर्फ पुअर होने की एक्टिंग करनी है इट्स लाइक अ गेम राइट
2: हाँ
0: कौन सा गेम
3: इट्स कॉल्ड डोंट वरी बी हैप्पी
0: ये कैसा गेम है
3: इट्स अ रियलिटी शो प्रिंसेस फॉर टीवी
0: हम टीवी पे आएंगे
1: रियलिटी शो क्या होता है
0: रियलिटी नॉट रियलिटी उसमें अलग अलग टीम्स होती है उनको किसी वियर जगह पर रहना होता है जैसे कोई आइलैंड हॉन्टेड हाउस या जंगल वहाँ हिडन कैमरास होती है जो सारे टीम्स को शूट करती रहती है फिर जो बेस्ट टीम वो विनर सिंपल
1: हमें कहाँ रहना होगा
2: एक छोटे से घर में पूर लोगों की तरह और हमारे पास होंगे सिर्फ $2,000
3: बट हम कभी भी सैड नहीं हो सकते
2: हर वक्त हमें कोई छुपे हुए कैमरा से देख रहा होगा
3: और अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो हम आउट
2: हमें हमेशा हैप्पी रहना पड़ेगा ऐसे
3: और जो टीम $2,000 में सबसे ज्यादा दिन सबसे ज्यादा हैप्पी